जों असाल साजा सालेन बगसे फायो अ जागाव जतमानि जों काहाम करङे तङै जतमानि काहाम के जों वानसुगै बाहेके काहाम के थाङै मालाय आबोनो फाटि नायलायनाय नोंले तामहनि वानसुग आनि खाबांनि दाखि बुकजों आं दिनै सामानिखे ताबुनि अर सिरिसि दिनै जे नुकमानि न' जों एइ फानांथों जेस फानांथों जों अमा हाइके बर' खबर ओङै थांबायखा जे रिल्स लिंक लगो किन्तु तो कथासे मुने का हेक करि जिबा चिनि दफानि बर' चिनि जेनेरेसन जों आबहायनो अंसु तो कथासे महाय सागाके बेलायखेन नायथक टंथक गोबां मान दङ आबहाय किन्तु बिसिं हाबिनि हेंगे आबो कसक चिनि दफानि तमुं चिनि बर'नि तमुंखा अमहायनो जों आबहायनि बेसिंतु न जों तंगै तंलाय हे दा आंखे आबो न नों बाहायन वान सुगिनाय तंलायदि जों बरगन फुनुनानि बागैनाय नैनि किसिसा नांमानि मानि रगन दा वान सुगलायदि ककडु कांगटाबक्ति सालिया जरा करिखा हायनो खरां पान्दानि उल आं नरबाय ककडु बाय करनाय आनि ककडु थिं फायगाटाबो ब्लिं टंग हेलो हेलो

हेलो अंके आं हांगनो खरां पांदा पायमाने यागुलो नंगाय कक सालाय फिनाय नंगाफोर कक दुख खालायमानाय कक दुख दाबो गाहामाङै फैखा नाकारमा सानो नरगनो त्रिनि साल खामानि पांदा पुइलानि बिखाखै आं नंबाय कक दुबाय गोरोंमायनि बागै अंके फाजि हांगनो खरां पांदा जों दाव खाबलायनाय

हानि खाजानि जावग्रि बुकसं तिनि असालो ककडुबै कामखौ गोरोंमाय इमान बागै नांनो नाखारमा सानो बाय सुसु मा हायरखुंगो तामबै हांगे नेटवर्क हामियारखुंमान बागै चिनारो मुखासे देरामुंग रंगि तंहा जों आबो टेपटखौ नायलाय जों टाकबो चिनि टेक्निकल सेक्सन नि बरो रखु नाय जोंलायो बबा हिखे ताम खालायमान हायबान ककडुबै गोरोंमाय एखनो आंकिसा आंनि साजेस्ट नांनो रैगोलां थानाय आव ताबुनो अजराव जों टेक्निकलो बेलेगखौनो कुसु कालायखा जों टेक्निकेलो सानसेयाव जों कुसु काजाक बेगसेखौनो जों कुसु काजाक हायफानो आ कुसु कामानि बिसिंथै नायमानि बिसिंथै बबहाय तामो जों दाखफानो आबरनो गाहामखे वान सुखि नायलियाखौ टेपटेखौ जों किसामिसा नायमानि बागै किसा किसा वान सुखमुनि बिसिंथै किसामिसा नायमानि बिसिंथै टेपटेखौ जों वानसुगु बबहायखे दाम खालायमान दाम खालायमिया आंनि खाजानि जाहाथे बुक सं जों रिल्स थाङे नै रियेलो फाइदि जों अबाहायखे रिल्स थांमान बागैन जों केसे केरंगो मानो जों केसे केरंगो अंगो रियेलो फाइखेंखे प्रेक्टिकेल तंगदि प्रेक्टिकेल तंगन बिसोरनि टाउन बसुक टं टाउन नाय बसुक मान आब्रन वानसुगुनै गाहाम गोरोंखे तंनान बागै वानसुगदि आंनि रांसारनि खाजानि जाहाथे बुक सं जोङो संसार अ जीवन साजा सालायनि बागैसे अजागो केबाय हामि हान्जागै केबाय जाया हान्जागियाव ओइबाय गाहाम गोरों तंमान जों आबन वानसुनानै बागैन टंलाइन नांगौ आंनि रांसारनि मारै किसिम सं खाजानि जाहाथे बुक सं फुङा सिरि सिरि नों बाय कक सानामु सङै नांदिनि फाइमानि आं अमाय टपिक्सनि तुमानि जे टपिक्सनि बेखाखदे इसिनि कबामा कलाराव बहायनो साकामु जे कक दुख्लायनि रग जे इ अमाहायनो हमै दङ टाबुनि अजाराव जों नायदि कालियाबारि थांगाखे बा आरो सामानि मोसामानि फट' पुस खायलायदिनाय आबो गाहामखे खालायदि ककरै नों टाबुनि अजाराव रिल्स फान खायदि रियेलो तंगिनै खालायदि जे नांमानि केव केव ससियेल वार्क खायमानि जों फुनुगौ ससियेल वार्क खायमानि नबरक फुनुगौ बरक मासायारनो सुबामानि आबहायरक नुगौ जों आबहायरक खालायदि असंसाराव नों केव केव वानसुगौ जे आं रि किसा बारा गानायनाय रि एख' खालायनाय गानायनाय केमन फुनु गांगे आं गाहाम गोरोंखे दंमानो गाहाम होंगानो आबाय होनायनाय किन्तु आल्टिमेटलि आबहाया जे लाइफ सान खायनाय जे दाउ फेसबुक खानांथों इउटुब खानांथों जे रां मानाय दं बरफ बिभाग न' समाज न' हायखेबा मुनि कथक फुनुगैनाय हायखे रियेल न' फुनुगै हायखे बिनि गांमा ससियेल वार्क खालामनो न' फुनुगै केवबा बरन' सवामान न' फुनुगै केवबा नों सामान दं न' फुनुगैनाय बरफ रिल खायनाय गांमा रां फैसा जिमानि जों नुगौ बस जरती मान आउट सैमिया किन्तु आं कयनाय सेलांथों बिरिंथों भुक सिद्रा खालायनाय रि बारा गानाय सेलारावबो भुक

खाइनाय नों भाइरल ओंना बागिनि कामा खाइमान दक जों नुगो रिसेंटलि कामा जों नुखा भाइरल ओंना बागिनि बरक नो हेरेसमेंट खाइमानि भाइरल ओंना बागि अमहाय जागा अमहाय थायो थांगिनि मांगप्लित सेना थांगिनि एक्सिडेंट ओंमानि आबो हेरक जों नुगो आबो हाइबाय मुंसाया आबो जों भाइरल ओंना मुसंगो माने आनि भिडिअ नो अमसिनो सों नायनाय अमसों नायथों आउन बागि आं अमहायखे फनोगो नायन होनै नों टाक्सु जरो नायदि जे बुरिबो सारक बरकनी रिबारा कानाइनाय जे रिल

बोसों नाइथों आउन बगे आं अमाके फनोगे नायन हने नंग टाक्सु जरो नायदि जे बुरि बिसारक बरकनि रिबारा कानायनाय जे रिल्स क्लाइमारक आरो बोसके हामिया कमेन्ट बुइ खायलाय आबो नलोंके बा आबो हाइन हाइ स्क्रीनशॉट नायनाय फनोगे नायदि आं हाके रि चमुरि मा सानो हाके गो क्लायो आनि इच्छा आबो हाइरक सों नुगुदा एक्चुअली आबो तो जांजा पर्सनल मैटर बिनि पर्सनल बियोस पर्सनल नायमानि आबोन के माना क्लाइमिया हाइपनो समाजक हे तंगमानि बिसिं बे काम करन के भाइके तंगै माने आबो नायनान बगिसे सों जतन फायो हंगे सों आबनो मवान सुलने हे दिबा आबोन बगै आनि खातानि थाखै बुक सों किसा मिसानि बगै अकनि बगै आसक निजिनो तलाव ताकार दिहाइसि सिकन ताख्लाइदि सिकन ख्लाइखे नों नहानियाव नि वेट न नों कमिनाय इन वेट न तलाव थानाय आउन बगै वान सुगि जेसपन सामुं ख्लाइजि उलो वान सुगिनि सामुं ख्लाइ पाइनाय उलो मुं सासों खांगे आबो निनि न जाया नै हे दिबा आउन बगै जानि खाफनि दाक्टि बुक सं फाइदि जों बाहेके काहाम करनखे तंगै मालाय बाहेके काहामनि बिसिंते जों नाय मालाय आबो न जों वान सुख्लाइनाय आनि खाफनि दाक्टि बुक सं प्रेक्टिकल ओंदि प्रेक्टिकल बगते बाहे काम के तंगीमान आबुन नायदि प्रेक्टिकल निसै गोबां कुनु करै हाइसि जों हाओ तंगै हाओ नाय नाय प्रेक्टिकल न खिबिउ नाय जों तंगहांके आबाहेके गो अंगलाक हे दिबा नान बगै प्रेक्टिकल नंग मान बेसिं नायदि बाहेके जों काम करनगे तंगी मालाय आं आबुन सानाय नरक न जिनि खाजानाय ताक्टि बुक सोंनो

आणि खाऊ नाही तावटी बुकसंग नंकनाच्या उज्जैन तेमने कॉकबुरक पांडा सरसा पॉइंट एक मेगा हर्ट सो तिन नवास हलो आंगटोंगो प्रसन्न नंग भाई मेलेखनो खा खामानी कॉक नंग भाई कॉक दुबई करंग मायन बगै आं महिनो बखा सायनो मि जोंगो तावनि बगै चनी कॉक दुबई करंग मले आंगो हाय नरो नंग खमे आं टेक्निकल सेक्शन रुनाय ले जोंगो बो भाई के कॉक दुक नि बगै बो भाई हंतेरा मोरो क्लाइ जों हेप्रा आं नन सायत मन के रियल वर्सेस रील्स नि नति कॉक सायत मन दिन नवास हलो जंगचिनी बर रोग जो आसे फेमानी यागल न जतन अमाय जो समाज दंग जे समाज जतबाइन लगे तंगना जतबाइन गाहम करेंगे जो तंगना नाइमान बिंग बहे गाहम आबनो वानसुना जो अबहे वानसुगे बहेके बड़ रोग बी गाहम के तंगना आबनो जो नाइनि नंसा कैसा गाहम होनी वानसुमा बी और संसार केव गाहम या नंगटमों बुनो सभा सुरमान बिंगटे बुनो गाहम खालामान बिंगटे बुनो लगेमान बिंगटे नंगटमों गाहम मोजे आबह के बीमानों संगा सोशल मीडिया नगो जिन ब्लगार रोग ब्रक हाइके पोस्ट खाईमान नगो जे खरसा बरक सुगिया नुगिया बरक नुलाइमानी बेलेगना हामाइयाफोर आं और मूंग सालिया जिनी बरक हाइटंग टाबक सकजरा बल नि बगै गाहमे ट्रिटमेंट खाईमिया बल नि बगै गामिया जो थे बरने रंगरी क्रीनी बगै कैसे कैरंग क्लाइजाक जो आगतला दलियो तंग जो वन सूगुजे असंसार बेबा तंख चाटक तंगलायो बेवन गाहम बट आल्टिमेटली आबो हाइया गोबा बड़क टागो सबार खाई दूँ जिनी गामिया जाए तंगनाय रग जिनी बरक दफानी बड़ रग गाहम के तई मान गया टिकेग मान गया गाहम के लामा ग्रै बरक साखाम ग्राय निबागै गाहाम सेब ग्रै गाहाम रोंनक ग्रै गाहाम लामा ग्रै देखग्रग मानंगिया आबहाय रोग जों गाहाम नंगौ आबं खाचिनि रियेल किन्तु दाखोन जों गाहाय रिल्स थंलाय दङ जे रिल्स नि बिसिंतै निजिनि साख निजिनि फिउचार निजिनि थिनांनो जों बुनि थानाय बेरारि मानि हाय मा दङ

हेलो नाकारमा सानो दाग बहनो आने खामानी दाउटे बुसं दिनै नों बाय कक दुबाय गोरों मायनि बागै आंनो गोबां गोबां कक मा साका नरगय गोरों ना मुसुं मानि हाइफन गोरों मालिया बो बहाय देरा मुंग्रगो मुइ दं खां गुट साइ मालिया हाइफन नाकारमा सानो हाइन हाइ नरनि थानि दिनै आव सालो नों बाय कक दुबाय गोरों मायनि बागै हाइफन आंखिया सामानि दिनै नों सालो आं आबोनो साना मुसुंगो जों रियेल दंलाइदि प्रेक्टिकल बी प्रेक्टिकल आं बी प्रेक्टिकल दंनाय काहाम गोरोंखौ वानसुक दि काहाम गोरोंखौ दंवान बिसोरनि बाहाय काहामाङै मान आबोनो नायलायदि आंनि खाजानि दाउटि बुक जों रिल्स न खासि गैयि रिल्स नोंखौल' थांगिनाय मुंसाव मानागोरैहायसि दानि बे हांखे रियेल

Kabang takut tapi kau cung lam sego tini ni radio quiz. Kenai tonai kabang takut tay. Bukuk sungguh lam sego tini radio quiz. Ang tunggu narok ni takut kisur radio quiz jauh narok jesse gutori mana asing narok bagi nai kabang nai piacung. Narok tu asingmung sungai tini ni puila. Sungmung radio quiz jauh ang tunggu tini narok ni takut kisur. आरजे किशोर एफएम उज्जैन तो सारसा पेंदो है के 101.6 मेगाहर्ट्ज रेडियो क्विज पांदा नते तिने रेडियो क्विज पांदो पुइला सुमंग नरकनि बागै चिनि जे स्टुडियो नि मंग चिनि एफएम स्टुडियो नि चिनि जे एफएम नि मंग एफएम उज्जैन तो जे राजप्रसाद नि हायखबा नुइमानि मंगने अम मंग नारक जाखा अब चिनि बबगरा बसंनि सनाम जाक बबाकरण तंगथाइनक राजबाडीनि मुं उज्जैन्त तबक सुमुं नरंगनि बागै सुमुंखा उत्तर सायमाखि सिमि कल खालायदि फाटफाटके उत्तर सायमाया वै तामा क्वेश्चन हनै नेतासंदि जेसे उत्तर इमाना आसं बागै नरंग बागै गाहाम नै आं नरंगनि बागै नै आं उत्तर सेस नरक न साया कुनर बायके कल खालाय तंगा आबो कैसे बेलाय वानामा सिंसा बिया उत्तर सायमानि न कल खालायदि आंनर बागै कयो उत्तर प्रश्न सायमानिने कल खालायदि प्रश्न अंखा उज्जैन तो

0: शिक्षा नरंग ने बागे ने सम्मों काबंग ताकुते बुखुसों किसी सा आसंग स्वयं मुंग पाचिंग थांगने भारतनी मिसाइल मैन हनाई ना चीनी जागो साबनो भारतनी मिसाइल मैन हनाई ना चीनी जाग बो बरोकनो भारतनी बो बरोकनो मिसाइल मैन हनाई ना चीनी जाग बनी मिसाइल छनामा बाइनो थाने बिचिवो भारत ताई पाकिस्तान बिचिंग ना कैसा चौबा चिकन सा नाम वो पाकिस्तान न बेला एक है ना मौखों में किबी मानो साबुन ही मंगवाई नहीं साबुनों मिसाइल मैन है नहीं चिनी जाग हेलो हेलो छोटनीता सदी ताकोक दिनी मोबाइल नहीं थी मैं मोबाइल का ना वो गांग के करे करे पुंफायो इन सदी तक
1: गाना
0: वो ना खाया माने कॉस्ट ऐसे कन
1: इफ़ाइट
0: होंगे तो उधर ए ताबुके खाना जोंग ता चली अब वो कोई स्पंदन का अब उनका ऑपरेशन सिंदल ऑपरेशन मिसाइल भाई अब वो खलाई जाका अब मिसाइल चनाब नहीं मुंगता मो
1: हमारे फैमिला है डरा
0: दाकन बेला है हम भाई बो अब मिसाइल चनाब नहीं मुंग नहीं ना बनो ना सिंग मिसाइल मैन नहीं आई सीनो भारत ने मिसाइल मैन सब नो हंजार हेलो
2: ताकर
0: को कौन इधर
2: साइड
0: हूँ ए सारे बुको लाम सको बस हाँ बताऊँ मनी
2: वही बताऊँ मनता
0: राष्ट्रपति आवंटन से कहाँ आवंटन
2: से कहाँ तम तम
0: बोका मुंग तो सही ना एपीजे अब्दुल कलाम बॉम्का साइंटिस्ट बोनो मिसाइल चनामो बेले बेले हम भाई बुखो कोनिका नो बेले हम भाई मिसाइल मैन हंजा को बोनो बॉम भारती राष्ट्रपति राष्ट्रपक्ष रघुंखा एपीजे अब्दुल कलाम बनो बनो चुन मिसाइल मैन होने नहीं सिनेमो मिसाइल मैन होने सिनी नहीं साइंटिस्ट ब्रह्मोस मिसाइल छनाम नहीं बनो रशिया तय रशिया निकाशा तीमा निमुंग ताए बारूद निकाशा तीमा ब्रह्म पुत्र निमुंगो ने ब्रह्मोस फार्जाखा ओ मिसाइल निभागिनो पाकिस्तान मखंग जाखा नहीं मानो सनाम ना इनका अब निभागिने अब निशिमिया अग्नि पृथ्वी अब है कबांग मा मिसाइल रंगो सनाम ना इनका आज और अन्य सनाम ना साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम इसरो ने कसम चेयरमैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर अबुल फजल जलालुद्दीन अब्दुल कलाम बनी शोइमुंग ताबुनी बेचबो किसा थंगमुंग फाइजिंग थांगा नें सिंग जतनो शिव क्रिकेट नि थुमंग क्रिकेट खरंग नय एम्पायर दङ आबुनि कारिबते खरकसा एम्पायर दङ आबोंके थर्ड एम्पायर टीवी नाय नाय रिव्यु खालाय नाय बसाव आबो आउट दा आउट जादा पुइला ओ हायुंनि पुइला थर्ड एम्पायर बाय आउदोंनाय साबो थार्ड एम्पायर बाय आउदोंनाय साबो पुइला हेलो लामसगो साबों का ताको कादंगै थांगा पुइला थार्ड एम्पायर बाय आउदोंनाय थोंनायनि क्रिकेट थोंनायनि मुंतामो

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: सामुका ताखुक
1: आं सानु कुमार
0: ताखुक सानु कुमार सारि आईपीएल नि फुल फॉर्म ताम
1: बुझलिया सर
0: आईपीएल नि फुल फॉर्म ताम

0: बी के नेहरू ने त्रिपुरा ने पुला राज्यपाल हास्ते पनी मंग बी के नेहरू बनी सोय मुंगता मो हेलो
1: हेलो
0: आ लामसगो बखु कनिकानो त्रिपुरानि पुइला हास्तेपा हेके बा राज्यपाल नै मंग सोंसाय मने बी के नेहरू बनि सय मंग तामो
1: सय मंग ब्रज कुमार
0: हा
1: ब्रज कुमार नेहरू
0: ब्रज कुमार नेहरू
1: ब्रज एना ब्रज कुमार
0: आ दाकन तब कुमार ले तंग हाइसेबले ना दाकन तेसाब तंग ककडुग दरी फाइफ के ककडुग करूंग दे जरा पाइथे पाइथे दरी फाइफ के करूंग दे 2 3 2 6 2 5 3

0: हेलो,
1: हेलो,
0: ए लामसको सको
1: आमन फुल फॉर्म विजय कुमार नेहरो।
0: विजय कुमार नेहरो दाकन लगी तुम दी टू थ्री टू सिक्स टू फाइव थ्री बीके नेहरू ने सयम त्रिपुरा ने पुला हास्थेपा ने मंग बीके नेहरू
2: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन

0: हेलो
1: हेलो
0: लामसगो सामका ताखो
1: हेलो सर आं गमुचलन बिस्रय
0: ए सादे ताखो बिस्रय
1: हिन्दी ताखिनि सामुन खलाय मानाब्ला
0: ए सादे
1: हर दिल जो प्यार करेगा हर नि रे सामुन न टाइटल ट्रैक वर्सी
0: सामन खनानाय
1: अर सिं खनानाय तिनि याख्रै बदनि इंगै
0: যতন বাগিন
1: দা
0: খনা দি তাকুক

0: हेलो
1: राजीव और कहाँ
0: जीव कहाँ ताको ब्रिजेस नो
1: रिकॉर्ड तो लन दलाई दलाई से निकलूँ का इसे ओपन ना रोमा के ऐसा खालो को तो पच लाइक ना हम भाई जिन्हें रोवा तुम तो थोका तुम्हें कोई स्मार्ट ना
0: बेला हम भाई
1: इतने खाना ना इंचा आंके सब मुंको बोलूँ ना खाना ना मुझे तो खा दरा
0: ऐ सादी
1: अब वो कुंडल पे बाहर है वो मतों मुंह तो खा बा मुझे रोशन ना समझ बा वो को আইছিনে দা বিছরাই দা তিজু সর দা ক্লান্ত সর ইসো মনে যাওয়ান দরে সর যতন বাগে নি
0: যতন বাগে
1: যতন বাগে দরা ভাই কলম কা
0: দা

0: हेलो,
1: हेलो,
0: लाम सगो ताको
1: आं बानिनि सेजरा दो सार
0: ए सारी
1: गान थेजा खनने मना
0: गान ले करै फ्यार सामुंग ले तों वान दो
1: अर सामुंग ना अंका बिमल गान थेजर ला
0: बोर सामुंग
1: ओ हिंते हिंते आ साथे चले चले समस्या
0: हां
1: लांगा बांग में से बांगम ला
0: हिमते हिमते
1: चाले थनाय
0: चाले थनाय अब माया के
1: ओह तंगर कैमो तो अब तो गाना सुबे सब आइया नगे मनीना मनम ला
0: दखना रे कोन
1: ए माने आइ बने सतर दो ओ कसो

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ लामसगो खुलुमका
1: फासिङ दाखुक देनि फोन खलानि
0: ए
1: गान खाना ना हमारे न रगा बहुत बुझ ले मारे लिया था
0: तो आप बोलो सुन कम ले
1: तब जे नंग जे गान खाना रे माने अब गान इसांग ना देख फेवरेट गान हाँ तो बिल ये पावो बहुत जे खाना ना हमारे आंग बोलो खाना रे जैसे नहीं
0: ए दा दा दा सादीं के
1: बॉय ने बुम को खाने देवल ने बॉय ता दौर
0: आ है
1: तारो रुपम ने लता मंगेशकर भाई हरिहरन साउथ ने गायिका वो गायक अब
0: ए
1: लिखा है ए इन हवा उस ए आ भाई ता
0: आ दर फिल्म संग ने
1: दर दर
0: आ दर है
1: डी एस डबल आर दर तो फन डबल भाई जुरी चावला ता
0: ए कॉकटेल इनकां के
1: लिखा है ये इन हवा उस ए आ भाई ता
0: लिखा

0: कमक ताकु ते बक्सु चोंग नरक नाय तो एफ एम जों तो सार स पेन द ख एक 101.6 मेगाहर्ज खानि रे सम पंदा आ कॉल खला दी कॉल खला दी 2326253 कॉक नंबर मोबाइल यूजर 0381 ओकुड नंबर ननि तापक दे हेलो हेलो ককরে তেওঁ কল খালে পিদি 2326253 ককডুং নাম্বার মোবাইল ইউজার 0381 অকুট নাম্বার নানি তাপক দি হ্যালো
1: হ্যালো
0: লামসগো তাকুক সাবংকা
1: ফুংকা হাম দাদা
0: ফুংকা হাম এই সাদি नंग किसा कॉक सापुर किसा स्वतंत्रता सदी ते मोबाइल ने किसा हासल कर सदी लाउड स्पीकर रही कॉकटा सदी तंग के अब भाई खोरंग बेलाई क्यों न दिस्ता बंता ए ए सदी ताऊ सदी ए ताऊ सराय सराय इनका सदी बोल रहा सामु बोरो सामु खोनानाय ताखौ हेलो बोरो सामु खोनानाय ताखौ हाय सादे बोरो सामु खोनानाय
1: इखौ बायोशानि बाय दा गुतमनि खोनानाय इंखौ दारा
0: ए बोरो सामु सारिक जराव साल पासा पिका होनो खोनानाय साल पासा पिका आदि लांमाव
1: आंबो ना दिदिकात खायनाय दारा
0: ए

नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी, समीर चाह रहा है। पापा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी, उठो। समीर हमेशा के लिए जा रहा है, जाकर देखा उसे, फिर शायद जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। जाओ नंदिनी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के

0: सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: Both sides underscored the importance.
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स

0: ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
2: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से

0: एक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
3: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।